0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के 2रे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कर घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षत वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कागार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानव उसकी प्रत्यंचा है और शम, दम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया। श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज बसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान शुरू हो गया है। इन केंद्रों पर आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना केकेएनपी इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने के लिए अनुमति जारी कर दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों के लगाने की अनुमति दी गई है। एईआरबी द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षय प्रद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। राज्य में आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।

0: पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC Under-17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू हुई गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: We diversified our sources.
4: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से LPG की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में LPG उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: LPG की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति

0: पूर्ति नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देशभर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देशभर में कल 2300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कुत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कुत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चियू हिस्यांग चिए और वांग ची लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन ली को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के

खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वर्ल्ड टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त

0: कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले तीन दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान, आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे घर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां की सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोक सत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Repolling begins in 15 polling stations of 2 assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. US President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC Under-17 Women's Asian Cup after 21.

0: गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मछुआरा समुदायों के कल्याण और विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं। कल श्रीकाकुलम जिले के एर्रामुक्कम में श्री नायडू ने कोल इंडिया लिमिटेड की सामाजिक दायित्व निधि से मत्स्य सागरमाला कार्यक्रम के तहत स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मछुआरों की समस्याओं को समझा था और उन्हें दूर करने के प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने शैक्षिक सामग्री वितरण में जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रीकृत खरीद नीति लागू की है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य भर के विद्यार्थियों को सभी आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 15 जून तक की समय सीमा निर्धारित की है। एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म, नोटबुक और अन्य शैक्षिक सामग्री समय पर मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईरान ने अपने मध्यस्थों के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसकी पुष्टि सरकारी मीडिया ने की है। ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। ये राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। फुटबॉल में भारतीय टीम एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने तथा हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. The re-polling has started in 15 booths in 2 constituencies in West Bengal from 7 in the morning today. Among these, 11 are in Pashchim Agarhat and 4 booths in Diamond Harbour Assembly constituency. Election Commission has ordered re-polling after irregularities were reported. Meanwhile, in another development, a special bench has been set up by Supreme Court to urgently hear the Trinamool Congress's appeal against the Calcutta High Court order that restricted counting centre staff to central government employees only. The bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joymalia Bakshi will take up the matter today at around 10:30 in the morning. Field operations for the house listing and housing census under phase 1 of census 2027 commenced in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh yesterday. The Ministry of Home Affairs said the exercise will continue till 30th of this month, during which trained enumerators will carry out house-to-house data collection following the completion of the self-enumeration period in these regions. Meanwhile, the self-enumeration facility has also begun in the Municipal Corporation of Delhi area, Rajasthan, Maharashtra, Meghalaya and Jharkhand. The online facility will remain open till 15th of this month, after which house-to-house operations will be conducted from 16th of this month to 14th of next month. In Bihar, the 15-day self-enumeration period ends today and field operations will begin today and continue till 31st of this month. Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri has said India expanded its crude oil sourcing base to 41 countries from 27 earlier as part of efforts to strengthen energy security during the global energy crisis. While speaking at the vibrant Gujarat Regional Conference in South Gujarat, he said long-term planning played a key role in managing the crisis, on boosting domestic production

समय रुका, फिर धीरे धीरे चलने लगा। मन का घाव धीरे धीरे भरने लगा। बाप की उंगली थाम के बच्चे चलने लगे, मां के बदले बाप की गोद में पलने लगे। साल महीने मौसम आने जाने लगे, शेर के बच्चे फिर से हंसने गाने लगे। बाकी कहानी कल, चलो अभी सो जाओ। अच्छा बाबा, तो सुनो,

0: केम छो?
1: हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते। हम रहीम खान पठान बात कर रहे हैं, परभणी महाराष्ट्र से।
0: महाराष्ट्र से?
1: हाँ, बहुत दिनों के बाद, बहुत इंतजार के बाद आज राजकोट को हमारा फोन लगाया था, हमें बड़ी खुशी हो रही है।
0: हमको आकाशवाणी राजकोट को भी खुशी हो रही है, महाराष्ट्र से हमारा श्रोता मित्र याद कर रहे हैं।
1: जी हाँ भाई, देखिए रेडियो के प्रोग्राम इतने जबरदस्त और इतने अच्छे चलते हैं कि हम तो सभी अच्छे देश के अच्छे नागरिकों से निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रेडियो सुनने का प्रयत्न करें, क्योंकि रेडियो में खास बात ऐसी है।
0: हाँ जी।
1: क्योंकि कान के पर्दे हमारे इतने बड़े हैं, क्योंकि हम दूर से जब रेडियो चलता है तो कानों में हमारे आवाज आती है। अच्छे
0: हाँ
1: अच्छे मनोरंजन, शेतकड़ी माहिती, आरोग्य सेवा, गानों का मनोरंजन, यानी हर बात हमें माहिती मिलती है आकाशवाणी के माध्यम से। और उसमें हम मोबाइल के और टीवी के और क्यों जाए, क्योंकि देखिए अभी मोबाइल का जो दौर है, मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल के अंदर छोटा बच्चा रहो बड़ा बच्चा रहो, स्क्रीन टच का मोबाइल उसके हाथ में है और उसकी बैटरी में जब उतनी रोशनी है कि आंखों पर जब पड़ रही,
0: हाँ
1: तो
0: जी।
1: कम उम्र में बच्चों को चश्मा लगने की संभावना हो रही है।
0: लेकिन बच्चों में ऐसा होता है कि आपको कुछ छुड़ाना है, उनसे कुछ लेना है तो उनको कुछ देना पड़ेगा।
1: जी हाँ
0: ठीक है,
1: वैसे
0: अभी
1: देखिए
0: वेकेशन
1: बच्चे जो
0: है।
1: रहते हैं तो देश का भविष्य होते हैं, और बच्चों को सही तरीके से संभालना ये माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
0: हाँ, लेकिन ऐसा करना चाहिए ना कि उनसे मोबाइल हमको ले लेना है तो उनको और कुछ देना है। अभी वेकेशन चल रहा है तो बच्चों को हम क्या दे सकते हैं, क्या खेल सकते हैं उनके साथ?
1: बच्चों का मान लिया जाए तो बच्चे तो ऐसे रहते हैं कि कुछ बच्चे उसमें ना समझ होते हैं, जैसा मोबाइल की अगर से वो बच्चा जिद कर रहा है तो माता पिता उसे लेके दे देते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारा ऐसा कर्तव्य बनता है कि बच्चों को खाने पीने का लाड़ अच्छा है और कहीं घूमने का लाड़ अच्छा है, पढ़ाई लिखाई का लाड़ अच्छा है, लेकिन मोबाइल यानी कंपल्सरी बच्चे के हाथ में है बोले तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। और कम उम्र में बच्चों को जो चश्मे लग रहे हैं तो उसका कारण भी ये है, क्योंकि बच्चों को कोई खेल खेलो ना, कोई ये ऐसा घुमाना गार्डन, ये अच्छी बात है बच्चों को, लेकिन मोबाइल ज्यादा से ज्यादा बहुत कम बच्चे के हाथ में देना है, ज्यादा नहीं देना। इस प्रोग्राम में हम एक शेर बोलना चाहेंगे ताया। उल्फत के इस मोड़ पे वक्त ले आया है, नहीं रोया जो कभी कांटों के चुभने से, उसे आज फूलों ने रुलाया है।
0: और गाना कौन सा सुनोगे?
1: तो बच्चों के लिए तो बच्चों का गाना एक मिस्टर इंडिया फिल्म से गाना सुना दीजिए।
0: आप सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं फिल्म मिस्टर इंडिया से आपकी पसंद का ये गाना।

0: नमस्कार,
1: हेलो
0: आकाशवाणी
1: हेलो,
0: राजकोट।
1: मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी,
1: मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, आसाम से ताल्लुकात है ना।
0: ओ बहुत अच्छी बात है। चलो कि आसाम तक आकाशवाणी राजकोट को सुनते हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।
1: जी, एकदम आपने एक तरीके से, क्या होता है, फोन इन प्रोग्राम जब आया, मतलब क्या हुआ, कुछ कुछ स्टेशन तो इतना दिल के करीब है, और आपके स्टेशन में जो घुसी का जो है, इतनी सुंदर वार्तालाप करते हैं, इतनी सुंदर क्या होता है, मतलब
0: अनुप कुमार
1: एकदम
0: जी, आज
1: दिल।
0: हमने विषय चुना है
1: जी,
0: बच्चे और वेकेशन की प्रवृत्तियां।
1: बच्चे और वेकेशन,
0: हाँ जी।
1: एक बात कहो, जो मतलब हम जब छूटे थे तो
0: हाँ जी।
1: स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे, तो जो वेकेशन होता है ना,
0: हाँ जी।
1: जो खास करके समर वेकेशन जो है, समर वेकेशन और पूजा के लिए दुर्गा पूजा वेकेशन, लेकिन खास करके मतलब एक तरीके से क्या होता है, समर वेकेशन के लिए हम लालायित रहते थे। तो बच्चों, हम तो बच्चे थे है ना, तो पढ़ने का जो मौसम था, पढ़ने का जो एक एटमोसफियर था, तो उसमें थोड़ा बहुत छुटकारा मिलता था
0: हाँ जी।
1: जब वेकेशन होता था। तो वेकेशन होते होने के पश्चात क्या होते है, कभी ननिहाल हम गए थे, कभी कोई रिलेटिव के वहाँ के हम जाते थे, और खेल कूद में हम मन लगाते थे, एक सुनहरे नजारा था बच्चे जो है। तो अभी क्या होता है, जो बच्चे हैं अभी तो के खेल कूद में इतना भाग नहीं लेते हैं, और खास करके वो जो क्या होता है, इंडोर गेम जो है, मोबाइल पे जो खेल होते हैं, उसमें दिनचर्या तो अतिबाहित करते हैं, तो इसीलिए बच्चों को
0: खेलकूद
1: ज्यादा
0: में
1: करके
0: उनको रस लेने के लिए क्या करना चाहिए?
1: जी, तो इसीलिए तो क्या होता है, हमारा जो अभिभावक जो होता है, गार्जियन जो होते हैं, तो ठीक है मोबाइल तो दिनचर्या का एक विषय होता है, लेकिन मोबाइल से थोड़ा बहुत दूरी रहनी चाहिए। खेल कूद में जो है वो तो एकदम क्या होता है, खेल कूद में उसका जो एटीट्यूड को लगानी चाहिए।

0: सा गाना चुनोगे?
1: जी आज बच्चे के लिए गाने हैं, आओ बच्चे तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करोगे धरती है बलिदान की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह के मतगणना कर्मी का चयन कर सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराया गया था। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के पहले 2 घंटों में 16% से अधिक वोट पड़े। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 4 मई को होगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फागन सिंह कुलस्ते करेंगे। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से

आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भोज प्रस्तुत है फौजी दोस्तों के लिए कार्यक्रम जय भारती। जय भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों आज के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत। गीतकार गुलजार, संगीतकार खय्याम।

फिल्म का नाम है आंधी, बोल गुलजार के, संगीत आर डी बर्मन का, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।

0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

फिल्म का नाम है नया जमाना, आवाज किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के, संगीत एच टी बर्मन का।

दोस्तों आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भूज केंद्र से आप सुन रहे हैं जय भारती कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म घर से। आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीतकार गुलजार, संगीतकार आर डी बर्मन।

आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया नाम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में।

फिल्म का नाम है दाग, आवाज लता मंगेशकर की, बोल साहिल उद्यानवी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं गुलजार का लिखा, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीतबद्ध किया लेकिन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

जय भारती। ये था फौजी दोस्तों के लिए कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भूज केंद्र से किया गया। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच 12वां पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षकों और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक

0: उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मानसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू

में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमरीका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया।
भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले दो दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज

0: નમસ્કાર, શુભ સંધ્યા. મીડિયમ વેવ 370.3 મીટર એટલે કે 810 કિલો હર્ટ્ઝ પર આકાશવાણીનું આ રાજકોટ કેન્દ્ર છે. શ્રોતા મિત્રો, અત્યારે 4:59:30 થઈ છે. આ સાથે જ અમારી સાંધ્યકાલીન પ્રસારણ યાત્રામાં આપ સૌનું સ્વાગત છે, અભિવાદન છે. થોડી જ વારમાં દિલ્હી કેન્દ્રથી હિન્દીમાં સમાચાર અને ત્યારબાદ અંગ્રેજીમાં સમાચાર પ્રસારિત કરીશું.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં જયા ભારતી. सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है. हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता. निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है. आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है. पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है. इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है. समाचार कक्ष से जागृति शर्मा. इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है. मगराहाट पश्चिम में 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं. शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है. निर्वाचन आयोग ने

अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए और 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स ने 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। वहीं डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना फ्रांस से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। लक्ष्य सेन चोट के कारण आज मैच नहीं खेल पाएंगे और उनकी अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट पर उतरेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

क्यों कहां कैसे अचानक खो गया खुद का वजूद, फिर भला किसको बताते। ये हकीकत है कि झूठ, भूलते जाते हैं वो जो नजर के सामने है। दिख रही है तो बस वो दो निगाहें और उनके सपनों का सुरूर।

की छांव तले संग गुजरता है वक्त, रुखसती में उसके हाथों की छुअन लेकर लौटने की वो चाह, कोई रोके लाख कि ऐसे बढ़ेंगी मुश्किलें, ये सफर आसान नहीं, आगे नहीं है कोई राह, पर न माना मन तसल्ली खुद को देता बार बार, चंद लम्हे ही सही, कल फिर मिलेंगे हम यहाँ।

उसका नहीं कोई हिसाब। छलक जाता है कभी बातों में, कभी आंखों में, और कभी बरसों की दूरी में भी रहता है दिल इसके साथ। इनके बिना फीके है रंग, रीति है दुनिया। कहने को सिर्फ ढाई अक्षर हैं, मगर अनमोल हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: दीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार श्रोताओं, सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम तराने नए पुराने में। आज के इस सफर में आपके साथ है पूजा नरानिया। लीजिए सुनवाते हैं आपको इस कार्यक्रम का पहला गीत। हीरो नंबर वन फिल्म से उदित नारायण और पूर्णिमा की युगल आवाजों में समीर के बोल।

कार्यक्रम तराने नए पुराने की ये पहली पेशकश आपने सुनी फिल्म हीरो नंबर वन से। लीजिए अब सुनिए तीसरी मंजिल फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीतकार है आर जी बर्मन।

फिल्म कृष्णा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक के स्वर में। मेरी हुजूर इस फिल्म से सुनिए, हर्ष जयपुरी के शब्द हैं, संगीत शंकर जयकिशन का, ये गीत मन्ना डे की आवाज में।

मेरी हुजूर इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अगला गीत ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म से बाबुल सुप्रियो, सुदेश भोसले और साथियों के स्वर हैं, समीर के बोल हैं, संगीतकार हैं जतिन ललित।

0: समीर के बोलों को संगीत में ढाला था जतिन ललित ने। ये गीत अभी आप सुन रहे थे बाबुल सुप्रियो, सुदेश भोसले और साथियों की स्वर में। फिल्म का नाम था ढाई अक्षर प्रेम के और ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं विविध भारती से तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: कार्यक्रम तराने नए पुराने के शेष गीत आपको समाचारों के बाद सुनवाए जाएंगे। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
2: मीडियम वेव 373.3 मीटर से लेके 810 किलो हर्ट्ज पर श्रोता मित्रों आप सांभळी रह्या छो आकाशवाणीनो राजकोट केंद्र। थोड़ी ज वारमां प्रसारित करीए छीए शास्त्रीय संगीत, ते पहला केटलीक जाहेरात।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीट के 15 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं समझा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में सम्पन्न हो गया। सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और

0: एक जवान घायल हो गया। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्ण कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना चोटी बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए रवाना की गई टीम के साथ ये घटना हुई। घायल जवान का उपचार हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। श्री प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। जयपुर में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने आईपीएल इतिहास में 226 रन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 370.3 मीटर से लेके 810 किलो हर्ट्ज पर श्रोता मित्रों आप सांभळी रह्या छो आकाशवाणी राजकोट केंद्र।
2: ગુજરાતની ભાતીગળ લોક સંસ્કૃતિ અને ધીંગી ધરાનું એક મહેકતું નામ આકાશવાણી રાજકોટ। લોક સંગીત, લોક સાહિત્ય અને લોક સંસ્કૃતિની અનોખી બોલીને હવાને સહારે સહારે લોકોના હૃદય સુધી પહોંચતું કરનાર એક અનોખું માધ્યમ આકાશવાણી રાજકોટ। મીડિયમ વેવ 370.3 મીટર એટલે કે 810 કિલોહર્ટ્ઝ પર ગુજરાતની મીઠી બોલીના ધ્વનિ તરંગો આપના કર્ણપટલથી આપના હૃદયપટ સુધી પહોંચતા કરે છે આકાશવાણી રાજકોટ।
3: અપને બિઝનેસ કો બઢાને કે લિયે લીજીએ આકાશવાણી કા સહયોગ ઓર દીજીએ ઉસે બુલંદિયો કે પંખ।
4: આપકા બિઝનેસ લોકલ હૈ યા રાષ્ટ્રીય, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: આકાશવાણી રાજકોટનો પ્રત્યે સંગીતનો કાર્યક્રમ અર્ચના હવે આપ માણી શકશો

मखतुम मुहिउद्दीन ने क्या खूब लिखा है, इश्क के शोले को भड़काओ, इश्क के शोले को भड़काओ कि कुछ रात कटे, दिल के अंगारे को दहकाओ कि कुछ रात कटे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी।
2: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि

0: अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8,52,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
2: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र CDOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज CDOT जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस CDOT की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने की देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि CBS का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है से फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में

0: विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: आपदा को हम अवसर में बदले, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाएं, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
0: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
2: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की, जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
3: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं जब मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं। इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं। 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई है, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे देश प्रदेश में 3,90,000 गणना ब्लॉक बने।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। चेन्नई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट में उतरेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के अंक में संपादकीय में हम बात करेंगे अशांत समय में वैश्विक शांति के संदर्भ में महात्मा बुद्ध की प्रज्ञा और कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्य में साम्य के बिंदु। हमारी अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में कुछ विशेष टिप्पणियाँ। उसके बाद हम बात करेंगे जनजातीय भाषाओं के साहित्य और उनमें बसी मनुष्य की आदिम चेतना के विषय में। और हमारी अंतिम प्रस्तुति होगी आकाशवाणी में उप महानिदेशक और वरिष्ठ प्रसारक रहे केके नायर की पुस्तक उसने कुछ मुझसे कहा पर चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ होंगी उनकी पुत्रियाँ सीमा सागर और सुजाता सहाय।

जब हम विश्व शांति की बात करते हैं तो इतिहास और साहित्य हमें ऐसे अनेक स्रोत प्रदान करते हैं जहां पर मानवता की सबसे उज्जवल आकांक्षाएं अभिव्यक्त हुई हैं। आज जब हम चारों ओर देख रहे हैं, युद्ध की आहटें हैं, भय की परछाइयां हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच दीवारें ऊंची होती चली जा रही हैं, ऐसे में रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य हो या महात्मा बुद्ध का दर्शन और उनकी प्रज्ञा, दोनों ही मनुष्य के भीतर करुणा, सह अस्तित्व और आत्मिक संतुलन की स्थापना पर बल देते हैं। कविगुरु टैगोर की बात करें तो वो केवल बंगाल के कवि नहीं थे, केवल भारत के नहीं थे, वे उस समूची मानवता के कवि थे जो सीमाओं से परे जाकर सोचती है और जो प्रेम को ही जीवन का सत्य मानती है। अशांत समय में टैगोर का काव्य एक दीपक की तरह है। ये नहीं कहता कि अंधेरा नहीं है, पर ये अवश्य कहता है कि प्रकाश संभव है। टैगोर ने गीतांजलि में लिखा, मनुष्य की आत्मा की पुकार ईश्वर तक पहुंचती है, पर वो ईश्वर किसी मंदिर में नहीं, वो श्रमिक के पसीने में, किसान की माटी में और बच्चे की हंसी में बसा है। ये विचार कितना क्रांतिकारी था उस समय के लिए और आज भी कितना ताजा है। उनकी कविता शांति का केवल आह्वान भर नहीं करती, वो शांति की जड़ें खोजती है, वो जड़ें जो मनुष्य के भीतर है, करुणा में, सह अस्तित्व में, प्रकृति के साथ तादात्म्य में। और वही महात्मा बुद्ध के उपदेशों में अहिंसा, मध्यम मार्ग और मैत्री जैसे सिद्धांत विश्व शांति की ठोस आधारशिला रखते हैं। बौद्ध साहित्य, विशेषकर धम्मपद, हमें ये सिखाता है कि द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम ही उसका अंत करता है। टैगोर की रचनाओं में बार बार एक ऐसे विश्व का स्वप्न उभरता है जहाँ सीमाएं नहीं संवाद हो, जहाँ भय नहीं विश्वास हो। उनकी ये प्रसिद्ध प्रार्थना मन हो निर्भय जहाँ, दरअसल एक ऐसे वैश्विक समाज की कल्पना है जो शांति और नैतिकता पर आधारित है। महात्मा बुद्ध की दृष्टि और टैगोर के काव्य में एक गहरा साम्य है। मानव केंद्रित चिंतन, अहिंसा की अनिवार्यता और आंतरिक शांति को बाहरी शांति का आधार मानना। आकाशवाणी, जो दशकों से विचार और संवेदना का सेतु रही है, ऐसे विमर्शों के माध्यम से न केवल अतीत की धरोहर को संजोने का प्रयास कर रही है, बल्कि वर्तमान को भी एक नई दिशा देना चाहती है, संवाद, सह अस्तित्व और शांति की दिशा में। साहित्य भारती की ओर से ये संपादकीय महात्मा बुद्ध की प्रज्ञा और विश्व कवि को नमन है, जिनकी वाणी में वैश्विक शांति का स्वर आज भी जीवित है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर। 90 वर्षों में कितनी आवाजें, कितने शब्द, कितने स्वप्न इस माध्यम में सजोए हैं, सवारे हैं। साहित्य का ये विस्तार आकाशवाणी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्ला।
1: एक सिलसिला यहाँ शुरू हुआ था कि एक कहानी चुनिए और उसका एक पात्र चुनिए साहब, उस पर एक वार्ता 10 मिनट की। तो जैसे मुझसे कहा गया तो मैंने तीसरी कसम कहानी चुनी, जिस पर फिल्म बनी है रेणु जी की, तीसरी कसम कहानी चुनी और हीरामन जो उसका कैरेक्टर है वो पात्र चुना मैंने। तो ये एक सिलसिला था उनका पूरा कि अपने से आप कहानी चुनिए, लेकिन बताना पड़ता था कि हमने ये कहानी चुनी है, ये पात्र, ताकि रिपीटेशन न हो। ये इस तरह के कार्यक्रम हुए। फिर साहित्यकारों पर वार्ताएं हुई, कहे कि साहित्यकार चुनिए साहब। फिर कहना आप उर्दू के साहित्यकारों पर लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब उर्दू मजलिस जो है, अब वह हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य सब अब दूरदर्शन पर तो धारावाहिक बाद में शुरू हुए हैं। रेडियो ने पहले शुरू कर दिया धारावाहिक। एक धारावाहिक कार्यक्रम चला था यहाँ, जिसमें धारावाहिक कार्यक्रम ये चला था कि एक लेखक और उसकी कोई रचना, वो होगा आधा घंटे का, रिकॉर्डिंग आधा घंटे की होती थी, लेकिन 5-5 मिनट के 6 एपिसोड होते थे। मतलब 6 दिन तक, मंडे टू सैटरडे, वो 5-5 मिनट सुनाया जाएगा। तो एक लेखक चुनना है आपको और उसकी एक किताब चुननी है, तो उसको आपको 6 एपिसोड में बांटना है और 5-5 मिनट के हों, जिसमें लेखक के बारे में और एक जो कृति चुना है आपने उसके बारे में जानकारी श्रोताओं तक पहुंच जाए। ये एक धारावाहिक शुरू किया गया। ये जब चुना गया तो हमसे पूछा गया, हमने उनसे कह दिया कि मैं लेखक तो कालिदास और रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, जिनका नाटक है मुझे। तो फिर मैंने 2 जो एपिसोड है वो तो मैंने लेखक के बारे में लिखा। तो रिकॉर्डिंग जब हो गई, तो जब प्रसारण उसका हुआ, तो हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं रमानाथ अवस्थी, उठकर गले लगा रहे हैं मुझे, सुना तुमने क्या साहब लिखा है। तो मैंने देखा कि आकाशवाणी कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है कि विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक कृतियों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में कैसे जन जन तक पहुंचा रहा है। क्योंकि जिस जमाने में नहीं था टेलीविजन, जिस जमाने में यह नहीं था, उस जमाने में तो एक ही माध्यम था ना कि लोगों तक पहुंचने का, वो श्रव्य माध्यम था, और श्रव्य माध्यम था रेडियो, ट्रांजिस्टर, तो आकाशवाणी। तो यह इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और मुझे यह देखकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि वो आज भी जारी है। आकाशवाणी न केवल सक्रिय है बल्कि अभी भूमिका को अदा कर रहा है और आज भी साहित्य को महत्व उतना ही दे रहा है। आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि हम इसका भाग रहे हैं, हिस्सा रहे, अंग रहे हैं।
0: 90 वर्षों का आकाशवाणी का सफर ये महज एक संख्या नहीं, बल्कि 90 वर्षों की सेवा, 90 वर्षों की साधना और 90 वर्षों की आवाजों का

0: उत्सव है। भारत की आत्मा का संबंध उन भाषाओं से बहुत गहरा जुड़ा है जिन्हें हम जनजातीय भाषाएं या बोलियां कहते हैं। संथाली, गोंडी, भीली, मुंडारी, कुड़ुक, बोडो ये सिर्फ भाषा या बोलियां नहीं है, ये जीवन दर्शन है। इन भाषाओं के साहित्य में मनुष्य की वो आदिम चेतना है जो आज के भौतिक युग में हम खोते जा रहे हैं। आदिम चेतना यानी वो बोध जो प्रकृति को माँ मानता है, जो नदी में देवत्व देखता है और जो पशु पक्षियों से संवाद करता है, जो धरती को केवल संपत्ति नहीं एक जीवित सत्ता मानता है। संथाली की लोक कथाओं में स्त्री की स्वतंत्रता का उत्सव है। गोंडी गीतों में वन और मनुष्य के बीच का वो रिश्ता है जो आज के पर्यावरण संकट के समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, जनजातीय भाषाओं का साहित्य और उनमें बसी मनुष्य की आदिम चेतना।
1: एक प्राचीन कहावत है, जब एक वृद्ध की मृत्यु होती है तो मानो एक पूरा पुस्तकालय जलकर राख हो जाता है। यही बात भारत की सैकड़ों जनजातीय भाषाओं के बोलने वालों पर भी उतनी ही लागू होती है।
2: भारत की जनजातीय भाषाओं में बसा साहित्य कागज के सफेद पन्नों का मोहताज नहीं रहा। ये तो एक ऐसी वाचिक विरासत है जो पुरखों की सांसों से होती हुई हमारी रगों तक पहुंचती है।

0: जब हम इन कथित हाशियों की भाषाओं के भीतर उतरते हैं तो पता चलता है कि यहाँ का साहित्य एक जीवित ज्ञान परंपरा है।
1: अरुणाचल की मिश्मी कहानियों में हवाओं के रुख को पहचानना हो या नीलगिरी की इरुला जनजाति के गीतों में छिपी जड़ी बूटियों का गहन रहस्य जानना हो तो प्रकृति के साथ जीवन ही एकमात्र तरीका है। चाहे वो लद्दाख के ब्रोकपा समुदाय के हजारों साल पुराने आर्य गीत हों, अंडमान की ओंगे जनजाति की लहरों को समझने वाली कथाएं, या मेघालय की खासी लोक कथाओं का मातृसत्तात्मक दर्शन, ये सब हमारी सामूहिक चेतना के शिलालेख हैं।
0: आज हमारे साथ इस विषय पर जुड़ रही है जनजातीय साहित्य और संस्कृति की जानी मानी विशेषज्ञ दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उमा मीणा।
2: सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जनजाति जो शब्द है ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक शब्द है, जबकि लोक प्रचलन में आदिवासी शब्द का प्रयोग होता है। आदिवासी समुदायों ने हजारों सालों के अपने जीवन के अनुभव, जो उनकी ज्ञान परंपरा जिसकी हम बात करते हैं उसमें उनके जीवन के अनुभव हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण उसका ज्ञान है, ये ज्ञान है उनकी कहानियों में, गीतों में, परंपराओं में, उनकी जीवन शैली में, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है। मुख्य धारा का जो साहित्य है उसे दो भागों में हम मोटे तौर पे विभाजित करते हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लेकिन आदिवासी बुद्धिजीवी अपने साहित्य को हिंदी के लोक और अंग्रेजी के फोक लिटरेचर से अलग उसे ओरेचर कहते हैं, ओरल लिटरेचर, जो कि पुरखौती साहित्य है। और इनका जो मौखिक ज्ञान है ये लिपिबद्ध करने का काम अंग्रेज अध्येताओं ने किया था। 600 से ज्यादा आदिवासी भाषाएं हैं, 100 से अधिक भाषाओं में लिखित परंपरा है। बहुत सी ऐसी भाषाएं भी हैं जिनकी लिपि नहीं थी लेकिन दूसरी लिपि का इस्तेमाल किया गया, जिसे पूर्वोत्तर में बहुत सारा साहित्य रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया है। कुछ उदाहरण मैं देती हूँ। देखिए, मिशनरी पीओ बोर्डिंग ने संताल पुरखौती कथाओं का रोमन लिपि में प्रकाशन किया था 1924 में। WG आर्चर ने 1945 में संताल पुरखौती गीतों का संग्रह किया था। और अभी 2006 में अन्विता अब्बी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लुप्त प्राय स्वदेशी भाषाओं पर व्यापक शोध कार्य किया गया है। फादर हाफमैन द्वारा संकलित मुंडा गीतों का भी यहाँ जिक्र करना जरूरी है। जब मैं कहती हूँ कि एक भाषा में एक समाज का ज्ञान संरक्षित होता है तो मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी। राजस्थान, क्योंकि एक मरुस्थल क्षेत्र है, वहाँ बरसात का बहुत महत्व है। आप देखेंगे कि राजस्थानी भाषा में हर

एक माह में होने वाली बारिश के लिए एक अलग शब्द है। वहाँ ऊंट के लिए 270 से भी ज्यादा पर्यायवाची शब्द मौजूद है। तो ऐसे में राजस्थानी संस्कृति को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना और उसको सहेजना बहुत जरूरी है। अंडमान द्वीप समूह में एक भाषा है बो, जिसके बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। अंत में बोआ नाम की एक महिला बची जो उस भाषा को बोलती थी, समझती थी। उस भाषा का संरक्षण नहीं किया गया और 2010 में उसकी मृत्यु के साथ वो भाषा खत्म हो गई। आदिवासी साहित्य में स्वानुभूति बनाम सहानुभूति की बहस नहीं है।

0: अंत में बोआ नाम की एक महिला बची जो उस भाषा को बोलती थी, समझती थी। उस भाषा का संरक्षण नहीं किया गया और 2010 में उसकी मृत्यु के साथ वो भाषा खत्म हो गई। आदिवासी साहित्य में स्वानुभूति बनाम सहानुभूति की बहस नहीं है, वहाँ अनुभव की आधिकारिकता पर बल है और इसीलिए आप देखेंगे कि गैर आदिवासी लेखक भी इसमें शामिल है आदिवासी साहित्य में, जिसे संजीव हैं, राकेश कुमार सिंह, महुआ मांझी, गणेश देवी। और इसके साथ ही आप देखेंगे 90 के दशक के बाद आदिवासी भाषाओं में जो लेखक हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। रामदयाल मुंडा, हेराल्ड तोपनो, वॉल्टर भेंगरा, मंगल सिंह मुंडा, महादेव टोप्पो, निर्मल मिंज, अनुज लुगुन, हरिराम मीना, शंकर लाल मीना और स्त्रियां भी आदिवासी लेखन में बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। आदिवासी समाज का चित्रण उनकी रचनाओं में बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। इनमें आप देख सकते हैं मंजू ज्योत्सना, वंदना टेटे, सरोज केरकेट्टा, एलिस एक्का, जसिंता केरकेट्टा, वासवी कीड़ो, जिन्होंने आदिवासी जो योद्धा महिलाएं हैं उनके बारे में एक बहुत अच्छी किताब उनकी निकली है, शांति खलको है, बिटिया मुर्मू है, सुषमा असुर है, बहुत सारे नाम हैं। सुशीला सामत जो कि पहली आदिवासी कवित्री और संपादक हैं और 1930 के दशक में लिख रही थी, जब महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान लिख रही थी, लेकिन इनका कहीं जिक्र नहीं मिलता। सीता रत्नमाला जिनकी आत्मकथा जो अभी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगी है, 1968 में उनकी आत्मकथा लिखी गई थी और उससे पहले बहुत सारी कविताएं और नाटक उन्होंने लिखे हैं जो कि विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे थे, लेकिन हिंदी के लोग उससे परिचित नहीं थे। हिंदी में परिचय तब होता है जब अश्विनी कुमार पंकज उनकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद करते हैं।
1: अकादमिक समझ के साथ साथ इस साहित्य को जमीनी स्तर पर सहेजने की कोशिश भी उतनी ही जरूरी है। इसी सिलसिले में हमारे अगले मेहमान डॉक्टर करमचंद हंसदा बीते कई वर्षों से जनजातीय समुदाय के बीच काम कर रहे हैं।
2: जब हम जनजातीय साहित्य को करीब से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यह महज शब्दों का मेल नहीं बल्कि हमारे समाज के जीने का ढंग है। अक्सर हम बिरसा मुंडा को एक योद्धा के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में एक नए विचार विशेष की शुरुआत की थी जो सादगी और प्रकृति की पूजा पर आधारित था। साहित्यिक दुनिया में अगर हम देखें एलिस इका का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, वो हिंदी की पहली जनजातीय महिला कहानीकार मानी जाती है। वहीं निर्मला पुतुल जब वो आधुनिक समाज से सवाल करती है कि आपकी प्रगति हमारे विनाश की कीमत पर होगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में तैमसुला आओ जैसे लेखक हैं जिन्होंने नागालैंड की लोक कथाओं को दुनिया के सामने रखा। यह लेखक हमें सिखाते हैं कि जनजातीय समाज में कोई सुपर हीरो नहीं होता, यहाँ पर समुदाय ही नायक है। हमारी कहानियों में कीटी से लेकर हाथी तक और पहाड़ से लेकर नदी तक सबका बराबर का सम्मान है। आज जब हम जनजातीय साहित्य महोत्सवों की बात करते हैं तो हम दरअसल इसी सामूहिक चेतना को बता रहे होते हैं। यह साहित्य समाज को बताता है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं है। अंत में यही कहूंगा कि इन आवाजों को सुनना और पढ़ना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है।
3: जनजातीय साहित्य क्रांति की गर्जना, चेतना की पुकार, सशक्तिकरण का शंखनाद और प्रकृति के साथ मनुष्य के उस शाश्वत संवाद की अभिव्यक्ति है जो सदियों से अटल है।
4: असल में ये वो साहित्य है जहाँ एलिस एक्का की संवेदनाएं बोलती हैं और निर्मला पुतुल की कविताएं हमें उन इलाकों में ले जाती हैं जहाँ हमारी आदिम सभ्यता के गीत बस गए हैं। साहित्य भारती के लिए मैं नेत्रा
3: और मैं प्रांजल।
5: अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आकाशवाणी में उप महानिदेशक और वरिष्ठ प्रसारक रहे स्वर्गीय के नायर की पुस्तक उसने कुछ मुझसे कहा पर एक लघु चर्चा। एक किताब जब किसी के जीवन की कहानी हो तो वो केवल साहित्य नहीं रहती, वो एक धरोहर बन जाती है। उसने कुछ मुझसे कहा ये शीर्षक ही अपने भीतर एक पूरा संसार समेटे हुए है। किसने कहा, क्या कहा और सुनने वाला कौन था? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम आज इस पुस्तक के सबसे करीबी साक्षियों से बात कर रहे हैं। उनकी बेटियां सीमा सागर और सुजाता सहाय जिन्होंने विनोद सहगल के संगीत निर्देश

0: लेखन ने अपने पिता की इन रचनाओं को सुरों में भी बांधा है। सुनते हैं ये बातचीत। सुजाता जी, आप पहले तो इस किताब के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: पापा सब जानते हैं कि वो बहुत ही मशहूर ब्रॉडकास्टर थे, बहुत नामी, बहुत ज्ञानी, बहुत जाने माने, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता था कि वो लिखते थे। एक दौर था जब वो मुशायरों में जाते थे बाकायदा, लेकिन फिर वो दौर कुछ दिनों बाद नहीं रहा, पर उनका लिखना चलता रहा। वो जो लिखते थे वो खुद के लिए लिखते थे, वो किसी को बहुत आसानी से न सुनाते थे ना वो शेयर करते थे। जब उन्हें लगता था कि सामने वाला इस लायक है कि इसको सुनाया जाए तभी वो सुनाते थे। तो डायरियां थी उनकी बहुत सारी जिनमें वो लिखते थे, वो डायरियां खो गई, सामान इधर से उधर हुआ, तो जो भी हमें मिला, हमें कोई राइटिंग पैड, जिस उनको जहाँ जगह मिलती थी वो थोड़ा सा लिख लेते थे, तो जो जो हमें मिलता गया हम उसको इकट्ठा करते गए। परेशानी ये थी कि वो उर्दू में था, एक और परेशानी ये थी कि उन्हें स्ट्रोक हुआ 98 में, तो उसके बाद उनका हाथ हिलता था लिखने में, तो वो आम आदमी जो उर्दू पढ़ लेता था वो नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि वो जो लिखावट थी रही उसमें बहुत शेकी था। तो बड़ी किस्मत से हमें एक शायर साहब मिले, तो उन्होंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने किन्नी के साथ, ये बहुत हाल ही की बात है, अभी शायद पिछले महीने की, उन्होंने उसको हिंदी लिपि में किया, मेरी बहन ने उसको एक किताब का रूप दिया, क्योंकि हम चाहते थे, इतना खूबसूरत वो लिखते हैं, आप भी पढ़ेंगी तो आपको एहसास होगा कि कहाँ जा रहा है ये, तो आपको भी वो सोचने पे मजबूर करता है। तो हम चाहते थे कि ये जो भी इन्होंने लिखा है वो दुनिया तक।
2: सीमा जी, ये यात्रा कैसे शुरू हुई कि आपको कुछ पुराने लिखे हुए उनके कुछ मजमून मिले जिनको आपने सोचा कि आपको ये, तो पहले तो आपको लिप्यांतरण कराना पड़ा इसका कि वो उर्दू में थी, फिर आपको इसे देवनागरी में करना था, अच्छी खासी मशक्कत का काम था। तो सीमा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जब आपके हाथ लगा, आपके पिताजी होते तो क्या चाहते इसे पब्लिश करना या नहीं?
3: पापा शायद ना चाहते, क्योंकि वो बहुत संकोच करते थे, जैसे सुजाता ने बताया कि अपनी शायरी भी वो बहुत गिने चुने लोगों को सुनाते थे। लेकिन मुझे एज डॉटर, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये हमको दुनिया को, दुनिया के साथ ही शेयर करनी चाहिए इनकी शायरी, और इरादा हमारा बिल्कुल पक्का था, तो ये तो हमको काम करना ही था, और ये बहुत खूबसूरती से ये काम हुआ है।
2: और लग गया तो ये सवाल भी पूछते चले, जैसे अभी हमें मौका मिला था कि कुछ दिनों पहले आपने एक आयोजन किया जहां आपने इनमें से कुछ चुनी हुई गजलों को, नज्मों को आपने संगीत में ढाला है और आपने गाया, आप दोनों बहनों ने उसमें स्वर दिए हैं, और साथ में विनोद सहगल जी का भी साथ आपको मिला। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, आपको क्यों लगा कि ये संगीत में इसे ढाला जाना चाहिए, क्या इसके पीछे मोटिवेशन रहा?
3: जी बिल्कुल, हम दोनों को ये लगा कि इसे संगीत में डालना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि संगीत बहुत लोगों तक पहुंचता है। सब लोग शायद पोइट्री शायरी को ना पढ़ना चाहें, और लेकिन संगीत तो हर कोई सुनता है, और लगा कि इसको अगर हम संगीत में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये बहुत लोगों तक पहुंचेगा। इसमें जिनका सबसे बड़ा हाथ है वो है विनोद सहगल जी, जो अचानक ही एक प्रोग्राम के दौरान लखनऊ में मेरे फादर को मिले, और क्योंकि वो अंबाला में रहते हैं, मैं उनसे अक्सर मिलती रहती हूँ, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि सर आप जा रहे हैं लखनऊ तो आप उनको, मेरे फादर को जरूर मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा उन्हें मिलके। तो वो, उन्होंने वक्त निकाला, वो घर गए, उनसे मिले, और बातचीत के दौरान ही उनको ये रियलाइजेशन हुई कि ये तो बहुत अच्छा लिखते हैं, और ये पोइट्री ऐसी है, इतनी खूबसूरती से मीटर में सेट है, तो इसको मैं, इसमें मैं म्यूजिक में इसको कंपोज कर सकता हूँ, वो ख्याल उनको आया। और बाद में जब वो वापस लौटे अंबाला, तो उन्होंने ऐसे बात करा, इसका जिक्र किया, तो मुझे लगा कि हाँ क्यों ना हम ये काम करें। और देखते ही देखते वो खुद कहते हैं, ये उनके शब्द हैं, कि ये नैयर साहब की पोइट्री है, मैं इसे इतना प्रभावित हुआ कि मेरे अंदर से धुन अपने आप बनती चली गई, और ये तो पोइट्री का कमाल है कि इतनी खूबसूरती धुनें बन गई, और जब बन गई तो मुझे ख्याल आया कि इसको हम रिकॉर्ड क्यों ना करें।
2: आप लोग क्योंकि बहुत गहरे जुड़े हैं, पैदा हुए उसी

0: से छाया है। हाँ, तो आप ये बताइए कि आकाशवाणी का एज एन इंस्टीट्यूशन क्या था, अभी क्या है और आपको क्या उम्मीदें हैं?
1: हम तो पले बड़े इसमें, बच्चों के प्रोग्राम करने से, फिर थोड़े बड़े हुए तो वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम करने से, फिर हर रात हम इंतजार करते थे हवा महल का तो बहुत सारे प्रोग्राम्स और पापा के प्रोग्राम्स तो हम सुनते ही थे, तो रेडियो तो चलता ही रहता था, कभी बंद ही नहीं होता था घर पे।
2: जो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज ऑफ डिक्शन जो आकाशवाणी में है, जो आपके अनाउंसर्स हैं, आपके जो प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं, जो आप भाषा यूज करते हैं और किस तरह से आप उन शब्दों को कहते हैं, हम, मुझे याद है बचपन में जब मैं कोई गलत वर्ड यूज करती थी, मेरे फादर मुझे इमीडिएटली टोकते थे कि तुम ये गलत कह रही हो, और फिर मैं ध्यान से आकाशवाणी का प्रोग्राम सुनती थी कि अच्छा ये लफ्ज कैसे कहा गया, और मैं उससे सीखती थी। दैट वॉज माई बैरोमीटर। आई लर्नड लैंग्वेज, आई लर्नड डिक्शन फ्रॉम कल्चर। सो आकाशवाणी इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया। जो युवा पीढ़ी है, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे है कि वो इस ट्रेडिशन को, इस परंपरा को आगे ले जाए और बाखूबी ले जाए। ये बहुत जरूरी बात है।
1: बस एक आखिरी बात, आपने पूछा कि पापा, क्या पापा चाहते कि ये किताब छपे? तो मैं कहती हूँ शायद वो मना करते, ऊपर से कहते नहीं नहीं ये मैं नहीं चाहता, लेकिन अंदर से वो
2: दिली दिल बहुत खुश होते कि ये सब गई है।
0: आपसे एक दरख्वास्त है कि आप लोग एक एक अपनी पसंदीदा कविता या नज़्म, अगर कुछ उसकी कुछ पंक्तियां आप हमें पहले से जाता जी।
1: इसको पढ़ के मैंने सोचा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है वो पहली बारिश, जब जब आई बरखा रुक की पहली बारिश, भीगी भीगी बोर आई सी चले हवाएं, चेहरे को छूकर निकले गीले गीले पोरों से, पलकें सहलाएं बरखा भीगी, सड़क लगे जब खाली खाली, तभी अचानक एक कोने में हंसते गाते धूम मचाते, सावन की पहली बूंदों का शगुन मनाते, आ जाएं अपने साईं जी, लंबी पलकें प्यारी आंखें सावर चेहरा, चेहरे पर झूमे लहराए सावन, भीगी लंबी काली घट अलबेली, हाथ में चिमटा ताल से ताल मिलाएं। इसको पढ़ के मैंने सोचा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि हम जब बारिश आती है तो हम निकलते बाहर, नहाते हैं, खेलते हैं, कूदते, ये साईं जी कौन है? मुझे लगा ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा शायद साईं जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि पुराने जमाने में जब बारिश होती थी तो एक उनको कहते थे मलंग, वो आते थे और उनका अटायर ये होती थी, लंबे बाल, हाथ में चिमटा, यहाँ रस्सियाँ, कमर में रस्सियाँ, और वो नाचते गाते थे बारिश में, जैसे वो बारिश का ऐलान करने आते थे। तो मुझे इतनी खूबसूरत ये बात लगी, और जो है नहीं अब ना,
2: जिस पर ये किताब का शीर्षक भी दिया गया है, उसने कुछ मुझसे कहा।
0: बिल्कुल, सीमा जी स्वागत है।
2: उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, उसने कुछ मुझसे कहा हो जैसे, एक परिंदा सा उड़ा हो जैसे, नूर ही नूर फजा हो जैसे, फिर किसी लब पे दुआ हो जैसे, आज लगता नहीं पहले जैसा, आज लगता नहीं पहले जैसा, कोई पैबंद लगा हो जैसे, अक्स आईने में बदला बदला, अक्स आईने में बदला बदला, सामने गैर खड़ा हो जैसे, दूर जाते हुए कदमों के निशा, दूर जाते हुए कदमों के निशा, आके वो लौट गया हो जैसे,
0: क्या
2: रात ने चौंक के देखा किसको, रात ने चौंक के किस देखा किसको, एक शोला सा उठा हो जैसे, उसके कांपते मोती थामे, उसके कांपते मोती थामे, बर्फ ही दस्ते दुआ हो जैसे,
0: क्या बात है।
2: वही मानूस पुराना बरगद, वही मानूस पुराना बरगद, कोई कुछ सोच रहा हो जैसे,
0: क्या बात है। बहुत खूबसूरत है, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका, आप यहाँ आए, आपने हमें, हमारे सुनने वालों को कम से कम के नैयर साहब से कुछ तारुफ तो कराया जो नहीं जा

0: जानते थे उन्हें, और जो हम जो नाम से उन्हें जानते थे उनसे थोड़ा और मिलवाया। बहुत शुक्रिया
1: आपका, बहुत शुक्रिया।
2: उसने कुछ मुझसे कहा, मेयर साहब की खुद की आवाज जिसने उनसे जीवन भर संवाद किया, और अब वो संवाद इस किताब के पन्नों में उतर आया है, सबके लिए, हमेशा के लिए। साहित्य जीवित रहे, भाषाएं जीवित रहे, और 90 वर्षों का आकाशवाणी का ये सफर यूं ही चलता रहे, इसी कामना के साथ साहित्य भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में हम सिंधु सुचेतन और H.M. स्मिता का वायलिन युगल वादन प्रस्तुत कर रहे हैं। एक विशिष्ट संगीत परंपरा में जन्मी ये बहनें सुप्रसिद्ध वायलिन वादक विद्वान A.V. वेंकट नारायण की पौत्रियां हैं, जो संगीत कला निधि मैसूर टी चौदैया के शिष्य थे। इस समृद्ध विरासत ने इनके लिए सुदृढ़ आधार प्रदान किया, किंतु निरंतर साधना और उत्कृष्टता की अनवरत खोज ने इन्हें आज के सफल कलाकारों के रूप में प्रतिष्ठित किया है। गान कला भूषण H.K. नरसिम्हा मूर्ति तथा विदुषी H.N. राजलक्ष्मी के मार्गदर्शन में और विदुषी पुष्पा श्रीनिवासन, श्री T.K. श्रीनिवासन तथा विख्यात वायलिन वादक विद्वान H.N. भास्कर के सानिध्य में इन्होंने ऐसी शैली विकसित की है जिसमें गहनता और गतिशीलता का सुंदर समन्वय है। आपका संगीत एक अनुभूति है जहां भावपूर्ण अभिव्यक्ति और तकनीकी कौशल का अद्भुत संगम होता है। वायलिन पर आपकी सशक्त पकड़ आपकी प्रस्तुति को एक विशिष्ट आयाम देती है, जिससे आपका संगीत अत्यंत भावपूर्ण और आकर्षक बन जाता है। अपनी कला के माध्यम से ये बहनें ऐसा संगीत अनुभव सृजित करती हैं जो श्रोताओं के हृदय को स्पर्श कर जाता है। अपनी उत्कृष्टता के लिए सम्मानित सिंधु और स्मिता आकाशवाणी बेंगलुरु की A-ग्रेड कलाकार हैं और उन्होंने गायन तथा वायलिन दोनों ही विधाओं में लगातार सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए हैं। आपकी कला को मद्रास म्यूजिक अकादमी, अनन्या युवा पुरस्कार, युवा पुरंदर पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित M.S. सुबुलक्ष्मी फेलोशिप सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सिंधु और स्मिता केवल कलाकार ही नहीं बल्कि एक समृद्ध परंपरा की संवाहक हैं, जो कर्नाटक संगीत की अमर धरोहर को गरिमा, नवोन्मेष और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाई सिंधु सुचेतन एंड H.M. स्मिता। Born into a distinguished musical lineage, the sisters are the granddaughters of the legendary violinist Vidwan A.V. Venkatanarayana, a direct disciple of Sangeeta Kalanidhi Mysore T. Chaudhaya. This rich inheritance laid a strong foundation, but it is the relentless pursuit of perfection that has shaped them into the accomplished artists they are today. Under the guidance of eminent gurus like Gana Kalabhushana, Vidwan H.K. Narasimha Murthy and Vidushi H.N. Rajalakshmi, along with mentorship from Vidushi Pushpa Srinivasan, Sri T.K. Srinivasan and Vidwan H.N. Bhaskar, Sindhu and Smita have honed a style that seamlessly blends depth with dynamism. Their music is a journey where soulful bhava meets technical finesse. Their command over the violin adds a rare dimension, making their performances both immersive and distinctive. The sisters create an experience that resonates deeply with audiences. Recognized for their excellence, Sindhu and Smita are A-grade artists of Akashvani Bengaluru and have consistently earned top honors in both vocal and violin disciplines. Their artistry has been celebrated with prestigious awards including accolades from the Madras Music Academy, the Ananya Yuva Puraskara, Yuva Purandara Award and the distinguished M.S. Subbalakshmi Fellowship. Sindhu and Smita are torchbearers of a legacy, carrying forward the timeless beauty of Carnatic music with grace, innovation and

0: अनवेवरिंग डेडिकेशन।
1: आज के इस प्रसारण में आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं बी एस प्रशांत, घटम पर जी ओंकार राव।
0: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट दे आर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय बी एस प्रशांत, घटम बाय जी ओंकार राव।
1: सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता अपने वायलिन युगल वादन का आरंभ पटनम सुब्रमण्या अय्यर की रचना इराना पाई के साथ कर रही हैं। यह राग तोड़ी में आदि ताल पर निबद्ध है।
0: सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता बिगिन द वायलिन ड्यूएट रिसाइटल विद इराना पाई, अ कॉम्पोजिशन ऑफ पटनम सुब्रमण्या अय्यर इन राग तोड़ी सेट टू आदि ताल।

0: अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वे अब संत त्यागराज की रचना गिरिराज सुता प्रस्तुत करेंगी, जो राग बंगाला तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा गिरिराज सुता इन राग बंगाला सेट टू आदि ताल।

0: राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सिंधु सुचेतन और एचएन स्मिता द्वारा वायलिन युगल वादन सुन रहे हैं। आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं बीएस प्रशांत, घटम पर जी ओंकार राव। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए सिंधु सुचेतन और एचएन स्मिता अब प्रस्तुत करेंगी संत त्यागराज की रचना ललिते, जो राग भैरवी तथा आदिताल पर निबद्ध है।
1: In tonight's national program of music, you are listening to violin duet recital by Sindhu Suchetan and H.M. Smita. They are accompanied on mridangam by B.S. Prashant, ghatam by G. Omkar Rao. Continuing the performance, Sindhu Suchetan and H.M. Smita will now present Lalite, a composition of Saint Tyagaraja in Bhairavi Raga set to Adi Tal.

0: सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता प्रस्तुत करेंगी मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना मीनाक्षी। यह राग पूर्वी कल्याणी में आदि ताल पर निबद्ध है।
1: सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता विल नाउ प्रेजेंट मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदि ताल।

0: अभी आपने तानी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर बी एस प्रशांत और घटम पर जी ओंकार राव ने प्रस्तुत किया।
1: That was तानी आवर्तनम presented on मृदंगम by बी एस प्रशांत एंड ऑन घटम by जी ओंकार राव।
0: सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता अपने वायलिन युगल वादन का समापन राग देश में तिलाना से करेंगी, जो विद्वान लालगुड़ी जयरामन की रचना है।
1: सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता

0: इसी के साथ राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में सिंधु सुचेतन और एचएम स्मिता का वायलिन युगल वादन संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर बीएस प्रशांत तथा घटम पर जी ओंकार राव।
1: विद दैट वी कंक्लूड वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड एचएम स्मिता इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। दे वर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय बीएस प्रशांत एंड ऑन घटम बाय जी ओंकार राव।
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से प्रसारित किया गया।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आकाशवाणी बेंगलुरु ब्रॉट टू यू फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल में दक्षिण चौना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
3: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालसुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान